0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN.
1: ओए वायस तो गया था वस तो गेदर रखी हुआ थे आवस तो गेदर याने के तब आई अमारुम वैली
2: फैलन लेलन दलुव विलस नितंब न लोला
3: इंदाल में इंदाल याना तेरी नवती ना इवनिंग

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तेरे संगत सतुन के सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं दुरुवेवा।